0: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯇꯧ ꯂꯩꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯍꯩꯁꯅꯥꯝ ꯒꯤꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯑꯕꯣ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯃꯣ ꯁꯤꯡ, ꯑꯕꯣ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯩꯃ, ꯑꯕꯣ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯇꯣꯟꯕ ꯋꯥꯡꯊꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯗꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ, ꯃꯇꯧ ꯂꯩꯕꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯂꯩꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯖꯦꯁꯃꯤꯟ, ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯐꯝꯕꯤ ꯏꯆꯦꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯆꯥꯟꯗꯝ ꯁꯅꯥꯌꯥꯏꯃ ꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯏꯕ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯏꯅꯥꯎ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯙꯤꯀꯥꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯒꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯐꯝꯁꯤꯗ ꯄꯨꯖꯔꯛꯂꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯊꯔꯨ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯨꯔꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯥꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯏꯃꯣꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯔꯤ ꯁꯦꯟꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫

आकाशवाणी इम्फाल हाउस एक ट्राफिक कंट्रोल पुलिस विंग मणिपुर की कंट्रोल रूम दगी पीबी रखपा इम्फाल मनुंग की उइबा लंबी की भीबम में हमदा पाउडम जरी नीति आयपा चुथेक जंक्शन सी की उइना पोस्ट ऑफिस लोम दगी लाखपा लंबी अमदी वेस्टर्न गेट कंगला लोम दगी लाखपा लंबी अनिशिमा मयाय उइरप उइना चेली अतोपसिंग दी कोमना चटनरी वेस्टर्न गेट कंगला जंक्शन सी की उइना नीति आयपा चुथेक लोम दगी लाखपा लंबी सीमा मयाय उइरप उइना चेली लोइनना फ्लाई ओवर रोम दगी लाखपा लंबी सीमासु मयाय उइरप उइना चेली अतोपसिंग दी अदुमक कोमना चटनरी मतांगसीदा ट्राफिक अपडेट पीबलुई सरी तुंगान तुंगान बथौरम सिंह संदुक्तुना तहन चरीबासी आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल दगिनी।

धन्यवाद प्रिसिला। नमस्कार दोस्तों, खुरम जारी। मैं नीथो खुंजम रंजना आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित संगाई चैनल में।

दोस्तों, संगीत और हमारी ज़िंदगी के सफ़र के साथ गहरा जुड़ाव है। जैसे ज़िंदगी में सुख दुख और उतार चढ़ाव होते हैं, वैसे ही संगीत के सुर भी कभी खामोशी तो कभी उमंग भर देते हैं। आज गीतमाला के कार्यक्रम फिल्म संगीत में सुना जाए कुछ ऐसे ही प्यारे गीत, दिल को छू जाने वाले गीत। आप सुनेंगे इस गीत को श्रेया घोषाल की आवाज़ में। फिल्म का नाम है जहर, सईद कादरी के बोल हैं और अनु मलिक का संगीत।

पेश है अगला गीत लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाजों में वीर ज़ारा फिल्म से, जावेद अख्तर का लिखा हुआ और मदन मोहन का संगीत।

दोस्तों सुना जाए केके की आवाज़ में अगला गीत। फिल्म का नाम है रोग, नीलेश मिश्रा के शब्द रचना है और MM क्रिम का संगीत।

संगाई चैनल में प्रसारित कार्यक्रम फिल्म संगीत में सुना जाए अगला गीत फिल्म फना से। इस गीत को गाया है सुनिधि चौहान और सोनू निगम ने। गीतकार प्रसून जोशी और संगीतकार जतिन ललित।

0: मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: दोस्तों सुना जाए अगला गीत शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में, फिल्म यहां से, गुलजार के अल्फाज है और शांतनु मोइत्रा का संगीत।

कार्यक्रम का आखिरी गीत पेश है कभी अलविदा ना कहना फिल्म से अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में, जावेद अख्तर का लिखा हुआ और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: मखल मथेल की थौरम सिंगना लेटिंग उइदुना संदोक चरीबा अदुंगी दमकनी आकाशवाणी इम्फाल की FM संगाई चैनल हौजिक पुंगफम सिदा लांथोक चरी एगी अनिंगबा मियाम की दमक थौरम सिदा लिकलम चुमना मंग मंगबा थौरम खोमजिनबा अमदी लांथोक पिरिबी कोंजेंगबम निर्मला चनु
3: आइगी अनिंगबा मियाम की दमक थौरम सिकिंग असी की तांगकत पुदुना लाक्चरी लिकलम चुमना मंग मंगलबदी सोइदना मंग फाउना हन बंगमी हाइबसिगी वारी खरगी पाउदम सिंह मियोय बगी वाखल न यौसिन बयादबा मफम अमा कदाई दलै बगे वाखल दिनिंग तंबनी अहांग बनी चनिंग ब यौनिंग ब मफम दा मिकुप त चत पंगमी यौबसुंगमी ताइबंग पालसिदा वाखल बु थिंग बंगमबा करम ब पल करम ब शंबल लेहन बंगम खरबगे निंगतम मदोम चटनिंगबा माइकई खन खनदुना चचरीबा वाखलगा असागा मंगलानगा अहुम सिमतम चुपदा थादोकनाबा यादना अमत्त ओइना पुनसिननदुना चटमिने वाखल खनबना अनिंगबा अपामबा अमबु फंगजबा पामबगी इखौलांगबा अदु लाखली खौरांगबा लैरकलाबदि आसा थमलै ताइबंग दमंग फाउनबा याबा लंबी अमथिरै मतांगसिदनि मियोइबा अमगा अमगा खेनारकलिबा कनागुंबा अमना सुपना खकी मंग मंगी आसा तवी अदुबु मंगफाउननबदि होनदि मसाना मसाबु निंदा तौजदुना मसाना मसागी असोनबदा ताइसिनजदुना टैक्सी सोनजै कनागुंबा अमना महाकना मंगलिबा मंग अदु मंगफाउ हननबा चोकथबनायदना होनै थिजिल्ली अखंग अहितानै होनबबु लेपत्रबदि मदुगी महै फंगदना कैदौनुंगदा खक मांगदि फिरोल फाउबा सेलमदबा नुंगी जुक्त लैरमबा मियोइबगी पुवारिनि चिंजाक फाउबा मई चंगलगा थोंगलगा चागनी फाउबा खंगलंबा नते ngasidii हौखिबा मतम सिंह ngamnamak wari oikhre puwari oikhre wari lairik khakta da yawramba taibong pansida oithokani haina sungtha thazaram daba mahabharat ramayan na singba mahakavya singda yawramba dolai apai bi tenjayama kapada tenjai chama chama longthok hanba ngamba अहांगबदा कनागुंबा अमबु खुदक्ता थौहनदुना वारी सानाबा मरेब लुख्रबा इरोल नुंगदा इसिंग मरिक अमता चोथनदना मफम अमादगी मफम अमा फाउबा खोंसालुबा थौहनिंगबा पोलम अमबु खुदक्ता थौहनबा पुमनामक्सी मियोइबना खलमी ngamnamak maya amadi mitrangi taibangni sumna khakki wari ni adubu masi asengbani ngasi ding ngamnamak ahingba taibang palsida loina uba phangli maya amadi mitrang amatta oiramdre होनाब थिजिनब कनब साइंटिस्ट कयाना थिजिलोय कयाना इन्वेंटर कयाना अखांगकनब महिरोय कयाना एंटरप्रेन्योर कयाना लेप लैतना मांगद चंगसिलकबगी महैना ngasigi male masina nong manong magi masek mangal thokpa hengalakli aikhoygi pikhraba singlaipak manipur asidasu honaba kanba chokthaba naidaba akhangkanba entrepreneur kaya leptana thorakli thagatningai ni makhoygi damak aikhoina chawthokjai अखोई ख्वाई पुमनमकना मखोई बु सगत फम थोई लिकलम चुमना मंग मंगबा मंगलिबा मंगलाना दुबु मंगफाउना हनबंगमनाबा मथौना फना मांगद चंगसिलकलिबा मचिन तुमखलकलिबा मणिपुरगी एंटरप्रेन्योर खराना असुमना फोंदोरकली।
4: आइ एम द इवनिंग माय मॉम अल्बर्ट आई हूँ इसमक एन आई टी मणिपुर लास्ट इयर फाइनल इयर स्टूडेंट ने एस टी पी आई ने सिंगीब हेकाथोन हई पार्टिसिपेट तौदगी फर्स्ट आगदना मथ थ्रू एम टी आई से मैं पाबीर मत लापदगी कंपनी स्टाब्लिश लौजाई क्वांटोरा लैब्सना अखोई मेन होना कंपनी तौद से फ्लड प्रिडिक्शन मिटिगेशन प्रिडिक्शन डिजास्टर मैनेजमेंट सिम मेन फोकस से तौर ममांग तानी सिक्स पॉइंट पिचिंग तौजरबद सेलेक्ट हो फनी मखादक सोयना ग्रान फंगजदना कंपनी जिसे दुई महा एस्टाब्लिश तौजिमने ग्रान से अराउंड 24 25 लाख आएगा तो 25 लाख से मोयना हाई से फेस अहम थोड़ना पीरकनेब ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯁꯃꯦꯟ, ꯑꯩ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯅꯤꯑꯝꯒ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯦꯝ ꯕꯦꯁꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯀꯥꯊꯣꯟꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ, ꯌꯥꯎꯁꯦ ꯌꯥꯎꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅꯔꯒ ꯐꯦꯁꯇꯤꯕꯤꯌꯥꯏꯅ ꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯗꯥꯏꯟ ꯍꯦꯀꯥꯊꯣꯟꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ. ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯄꯤꯁꯤꯡ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯁꯤ ꯐ꯭ꯂꯗ ꯃꯦꯅꯦꯁꯃꯦꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯔꯛꯈꯤꯕ. ꯇꯨꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯣꯛꯇꯥꯏꯅꯤꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯦ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯣꯔꯥ ꯂꯦꯞꯁꯤꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯃꯦꯅꯦꯁꯃꯦꯟ ꯔꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯦꯟ ꯐꯣꯀꯁꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯂꯗꯇ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ. ꯐ꯭ꯂꯗꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯍꯟ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯗꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ 2024-23 ꯀꯪꯂꯥ ꯃꯃꯥꯡ ꯇꯧꯔ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯒꯤꯕ. ꯑꯗꯨ ꯐ꯭ꯂꯗꯇꯣ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯣ ꯀꯔꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ

0: 아이고 멍나 따이 멍나부터 우리 시부. 호 모이따 모 모이따 모 도움도 못 토크라바 자노니 호 모이따 모
1: 오케도르게
2: 까이노 까이노 눕힌네 거래 이두보
0: 아이나 따라글리바 파우시 부숨라브라바
2: 까리 파우노 까리 파우노 능네 따라이보
0: 호 능 하다 카운실러 보 리업가니 하리세
2: 능디야 까라이데 따라이바
0: नते नंबो हाईरी बसी बुचुम लब्राबा
2: आ चौक धुई न कना कना तो नो हाई न हाई बनी अदु दा हाई यू एडी नी
0: हम कया दा लाइन खोमिनो येंगो ने नते अदु बो पंग हाई हाई बया बा
2: वाराबा
0: नो बो तो लेपनी न गा मोय ओइन लेप या दा ब्राबा नंबो अमुक पक्षली दो करी गिनो हाई बा बो लेप काई ना यारु को ता मो तंग नु को
2: करी गि यारु दोइ नो आइ दि खलिम नी मतां जु चप चाब हंदा किस
0: काइनो हाइसिबो अस
2: हाय हाय मीतानी ला मुंदा ला
0: काइगी नो बनांग इमुंदा संग चाइ सिदा तुम वारी छानर सु या बसिदा
2: आइनी यु गोलो छि फन कुइले दना हां मसिने सा खुंगी मुंग मनुंगी मकु मता मेन ब खंग नेतना करी हिन बे तो गम निगे हां नंगी ननागी ननपी बचा म पाउ ब सा ब गब दिसिनी
0: होइले अदु बुदि चुमे बा
2: वाफम मने ने हौजि काउन्सलर कुमार से मीन करकरा साउना बमाले बा
0: हां
2: मागी भोत चीन की बनाम है हम मैं खुश थे हिरा थक पलाई देना
0: आ
2: यू करकरा गौड़ा गांधे दी मुई की वारी से कुमार की वारी यहां तने बा आई ने तासीन ने दे सार के तारी में ना
0: यू गौड़ा का गांग बवा बो मरा नहीं वा और इनी दा अते लाई दी मोई तामो भोत ले पदी यू यून बदी तोक पता बनी ने
2: आई बत कदाई दी वानो ने मसी तोक पदी कराई याद क्या मियाम मांग फोन यून बदी फजर रोय हा अदुन खुई मनिंगी पुखरी मपान सीधा संकट पम सीएम का लोन यून तोरी मिने बोन इजी दिनिया अंग अंग म पम इसने रक बोन मचिन जाम न फंग न बोन बदु बनी हे यू यून बदी तो पया पोन देना वा वा लाउ नो यू न बोतर फा दोरी मिने खंग बा
0: खंग दे खंग दे लेप ने न लेप पुरगा हयें कार दि फाइ दो अदु दि न तदना कहौ द दि अस आई आई दि हाई बी दि हाई सिनी को
2: आई आई आई तोगे आई तोगी यम
3: तासाम तासाम लेत्रो
2: हे मपान दा गांग सिंग लाक पमाली आई यम त थोगी के न गांग सिंग दे ने सौनिंग ब या निंग द ब उत ब या दे को आई बहुत लेप तो रम ने
3: ओ तासाम
4: तारे तारे ए चोक थो है ला ला तो तो
3: ई ते मा
0: ला ई रे बुवा
3: ओ ते मा
0: संगो संगो
3: बोट कुछ लेटर बिसदा इते मग कई तनर मिनोता साम
4: आ मखा ले कायदा ऐसे बोले पने ना वा वा लाउड रे ने
3: ऐ ना ना नरम बने
4: तो तो तो तो
3: आ तक की ता कुमार की लंबा होइना ओवान ले काय दे की ता साम दो याम लिंग न बोट ले पक दो रे ने ना
4: अदु नी देदा नतई मैंने जो बोले अब कहीं तावा जिधे चुंबले ही ना हनी
3: यार माँगा कि नहीं पाव से तावा दे और हमने अब ताकुमार रो कोई यूंदर लागा आई उन्हें तो भी याद तो थबा अमन ले रहे थे ना इमा होए तसो होए ता आयर में आए जी
4: यूंदर लागा माजू आई बोले पनी दक तावा जिधा की बन मकलाक तो नी अब जानी हाँ
3: की की तो जी कहीं नो मखारों तो कि ऐने पूरा का लाका तो बमियां दो माँ खंग बा अधुने नहीं
0: बोसी बुता सेंग ने लिप तो माता रब रोता उड़ी सी बा
3: कई वानों ने ते माँ इका तो कार वो बोसी तो बो शुम बतन जाए जी पाक पाक पाक बोती नहीं ते माँ
0: अस ऐ दिने पंकी तो की को यं पाक ले
4: सखी नंग जी ने पाक कन मजी ना ऐ कौन था खुद मचिंग जे इनो जिंग तड़िये तड़ा थोड़ा करने लगा तो दूरी मिले
3: जुमी तासाम सीधे की दिने आखो जो यूम लगने सुअन हलवे तमने सीधे तुम ले एक तने चार ने तुम ले रहे तमने
4: ले रहे लोई ने ना
3: अधु कनी ते माँ हद तक तिया बात तामोनो बोर्ड का आप है बेची में दिने शाम में शाम सोई द्रबने
0: अधु बो चौथो है
3: ते माँ है भी
0: फागी या बताबक सु न तेदो
3: मने में फागी न ते
0: हल्ला मन सिंह सु घर ताना बना पत्रो नो बो
2: चुमी चुमी चुम सागे ये खुराई तोन में आम सु ले रही थी ना
0: होई ने अदु ने बा अदो आई असोम दा अंगां घर सु पामी आई मोई जाना थक न बा मुक्त ये मुक्त ये को नयाम बगा वारी छाना रा मो
3: ते माँ कहीं तो पकड़ पियू मुको
0: हो हो
2: अदो चौथो इनंग बो बोट कर पाए किधर
3: हो यंबा मसाम तं
2: 我不爱接地了。
3: 真是。
2: 哎，这个我才没看来，该我们都不看不着了，不看到了给。
0: 看得的，啊，亏不压不出压好味，压得不出压好味。
4: 嗯，压不压了的，压得不出压大的的。
2: 啊，哎呀，给我接的，看来得压对了。啊，你就过来，你就过来，对
0: 的。啊，对来的，我打莫那，我来把这个，哎，就喊得的，我刚不个些，也买了玻璃的。
2: 啊，我刚不个也买的。
0: 哦，哎呀呢，嘛看来该容的，我恐怕是不读的呢。
2: 嗯。
0: 啊，亏个也那得吧，一年内用亏的住呢。
2: 嗯。
0: 涨的也得的呢，还涨我嘞。
2: 一年内用亏的。
0: 会，阿杜的呢？一年内用的呢？
2: 嗯。
0: 啊，有有那个，阿刚买呀，妈妈你傻逼在那个忙。好嘞，阿杜个胡子呢？波裂呢？海里是不？阿快滴波个呢？阿妈的皮包阿毛，海里不给玩的。
2: 阿杜的干嘛多啦？
0: 噶多么多人看的啊！意思，我靠些，杀来！阿杜个海里，
2: 噶里海里。
0: 一年，准备阿快说一查可给看那个钱不胖了不的海度呢？有多有路嘞？
2: 嗯
0: 嗯嗯。噶呢？钱胖一胖一，阿杜不？马西阿爸爸他把外人这康乐把那个游泳把脱了个，米阳给些把倒了个，害得那那样的。

0: मरी गाई जी खिटकी नटी है वानी अस पमुख रे था फरे से लाइन ने तम बम ले जरा मनी से ए मिठोक दी है अखुई की न बुहे ना फजे भी हेली फजे द्रो
1: माने फजो जाने मी मी थोक तू दने ता मो मो ने ना याम पखल से अ कोई ना का कि सोई दरे खन मदने मो रोंगी वाकर सिंदो आई उ बद ममाई सिंदो फट फट ले थोक ने खांग ना ले हो वन
0: ले थुई बा
1: ले थोई बा
0: बुआ जी उची पके के ता हाइ दो नि देखो सैता अदो फरे आ इजु हा तो बोता के अहिंग तुम तो बने वाले
1: दामो
0: नपानी जु वार मनी ना ना तो पोता न तो
1: ओ दाम इबानी दो मसा मुं पर का अदु पोता रे से दाम
2: या तो चलो चेस
0: चौथो है मई बहुत मशीन थी बगाए तो हाउ ग्रुप चालो
1: हाउ ग्रुप था मैं मैले जी पहुंचा रहे नहीं
0: अस मिहुंजी याद रहे नहीं प्रश्न चोंग है ने
3: तमो मिहुंदी मैंने वही कुछ सुनी नहीं
1: सो इतना कानी सो इतना कानी ऐन ने खंजे बले गरंग मंद फिरान जे खोप चाप दिना उरम मेमी अशेम बने तमो अदुगने अतिया मथक सिदा तमो की फिरान से मनिंग तम ना आई पन अमत याव दना एक तो फर्म हायरम भी वानी से
0: क्या तुम
4: कुमार वोट कुमारे मिले भी योजना
5: कुमारे
4: मिले भी योजना
5: कुमारे
4: कुमार वोट
5: कुमारे
4: मिले भी योजना
5: कुमारे
3: करीनो
4: क्यों
3: जी क्यों तू जी वो अस्करी अशुभ तू मजा लो अशी इवन फरे है शिदे अश याम था जी
0: करी करी
3: तबो याम था जी है शिदे
1: ऐ ऐ मी हाट के नहीं है ऐ मी हाट के नहीं है मशीन चीपा ओए तबंगांग बा लेम ना मत था रोय अश अश अशुभ कन्न होने लगा अरे इन बदल लो इतना
3: इस आई आई आई
0: तमो
3: तमो
0: तमो
3: तमो तमो शाम के नूप तो रजिव
0: तमो
3: ओए दिमा ओए दिमा इशिंग तो गिद्ध को धोख पे रो इशिंग तो
6: हाँ
3: ओए तमो
6: मुझे तमो कहीं तो रहा है बना
3: ऐ इशिंग तेरे को धोख पे रो
6: सीसी दले मुझे तमो मुझे तमो से मिता मो
1: तमो अब कोक तक इशिंग तो तमो कोक तक
6: मुई तमो
1: छी
6: मित पांगो
0: सकी सकी
6: तमो
0: तार ब्रा कुकी नाव जा नु नु नु लाउ सी ता ब्रा
1: ता ता ये भाई
0: अकु अकु की म पाई ओड को ते मेरी एक जुजोन बन पूरे ते न कलक पीन पीरे ला यू यू आई नु हड़े ते आई है आई की न्याय ब करी ले ओरी के हां ไอ้หลวยเด้ไอ้หลวยเด้ไอ้หลวยเด้ไอ้หลวยครับผมจุ๋มมีจุ๋มมีมีอำนาจเราดิไอ้ดิมีเรียบอยู่โยนบ่ได้มีเรียบอยู่โยนบ่อยู่โยละกะโบเล็บพัดตะบะมะยายกาบจินจากโยละกะโบเล็บกะดิมีอำกิมีเรียบป่วยกะนี่คัลลุบปุ้มบ่ตายโอนรบกอ इरल ने तुम बम बजुलो इन माल न बताग ल आई की दया बग चीनी करी ले औरी के इनाव जा आई की दया बग करी ले औरी के आई का चीनी वो खलतार आई न आई न मिया मु यू पितक पितक लगा पत्त बचिंजाक पीछे लगाई की मील हुई कनी ऐ न भूत का घनी है न खलुबा मियाम की सिवा तो होगनी है न खलुबा सब धोए तो माँ मियाम न कोई बुआ चोब बराब तबीरे रहे मैं आई काब चिजाक ले लो लगा चिजाओ पारे भूल लेप कनी कल्ले बले बाग बचा जा न कोई सुई कुम्ना वाब से सोई दे तागनी मियाम न कोई दगी हेरे सिंह बनी को
1: गजी
0: दे गजी दे गजी दे मियाम ने तोन भी बा 아이기 민꼬지 하루 오늘 롱으로 미리 뷰요원 봐 미리 뷰요원 봐 미리 뷰요원 봐
6: 나모
7: 다비리 야이프 용발기 릴라마자 미리 뷰요원 봐 릴라아시드 색금 랑키바 싱디 시암기 색금다 라탄 구마르 레이탄템 Sakhi Saktamda Maibam Baitarani, Chokthoi Saktamda Thokchom Joseph Amadi, Tombagi Saktam Langkiba, Moirangthem Ibopisak, Lila Iba Chabungbam Janesori Devi, Lila Puthokpa Thokchom Renubala, Puthokpa Datengbangba Langonjam Setyaji.
8: Yai Payumbanda Yumpa Moiba Lila Macha, Mirep Yuyonba Si Ngasigi Thorungi Aroi Boina Silupa Taminare, Lila Asibu Ibirakwina, Chabungbam Janesori Devini, Lila Asibu Puthokpina, Thokchom Renubalani, Puthok pada tengbang mana langgonjam chatejini.
9: Hoi.
8: Adu di sebe ma tongan tongan ba makhal matingi. Thoram singa si su taminar bani na. Isilu pasu mata soi da hanana batar si.
9: Fani fani bungo na si su yuk jagragi.
8: Kungangi thoram tabiram liba khoi pun namupu. Amukana silu pana kurum jari.

0: 건강기 더럼 선독자 방가 쓰고 있는데 마땅스텔로 이제리.
1: 하이 돌리.
2: 하이.
1: 나 그래. 넌 아도 깨달아 이도 가이사게 해도.
2: 아이기 두가네 뭐 한국에도 애드버티스먼트 합기나 나혼다 다나기나라 이니.
1: 에, 양페이케노도디야. 가리가리노 번난기 두간도 방이가 해리스나.
2: 아이기 디 베라이티 스토어네. 홀세일수 아도 리테일서 도미아오레다.
1: 오, 아도 오레티네. 올인디아레도 임팔다 꼭절루야 드로능보.
2: 오, 아도 미로이나 막다 여한 바붕암 도리브로두바.
1: 가리기 넘보이도노 해. 진콩싱야다 나타나. 아흘나하 미풍띵나 타나리바. 상하이 채널 하이브 아마가네 방글라 채널 하이브 아마가 아니레르버니 고 호직티야
2: 오오 마멀디게 아이럭 토이자노 아도 아이디야 아마가디 달리고
1: 이시스 마멀기 가수 칼리마레
2: 칸드디 게이노 낭보
1: 루파 삼리 장마더기 호로가네 소 이스 바야 멈슬레르미 돌리
2: 오오 아도 에이타르가디 콰이디기 파바 옵션시 마시나 오이레니 나디 칼레
1: 토토토토 오이도이데 마시나 콰이디기 파바
2: 옴나마쿠타람 나옥처리 आकाशवाणी इंफाल की कमर्शियल सेक्शन दा लेंशन बिरउ अदोम की पाउजेल मियो लाखा कयादा योहन जगे
3: मरई बाक मरम दम नुंसी दब मियो सिंग इरई लेरम लोय मिखल मतम लाक पदा आई न फई आई खोई न हेली नांग न सखनाबा लाउनबा ngakतने
4: मिचम प्रजा आई खोई मयामसु लेबाक सेम गदबा अफब थबक तौर कदबा कैंडिडेट पामनै फंगनब्रा
3: मिजम प्रजा एजेंट सिंग अमदी कैंडिडेट सिंग द बेस तोबा लीला तरा संदोकना बगी आई बसिंग दगी स्क्रिप्ट कौचरी
4: एआईआर कोड सोक तबा अमदी अनौबा अवोन ब पुरक पयाबा स्क्रिप्ट सिंग स्क्रूटिनी तौजरगा अक्टूबर लिसिंगनी कुंतरुक तगी थंगना थंगनाना नोंगमाइजिंग तरा मक्ता लीला सिंग संदोक चगनी
3: सेप्टेंबर कुंथ्रा फाउबदा पुंग अम सानगदब स्क्रिप्ट सिंग आकाशवाणी इंफाल की ड्रामा सेक्शन दा योहन बिरहु
5: Across X wahiki waningai oidrei hokiba sehi english singani kunitoi dagi manipur gelok phamda sehi mari chupna season aduna lakoda my park tuna laklaba across x season abiu phohun khraba amadiling khraba matung numit humphumanga ni dagi hundrani sukhraba wahik sukta tadriba amadita khraba lo phamda hidak asikap thok piu hidak asina myoi bada kanaba piba nga tintro kharoina singba sihande across x phangpham AR Agro Kaisampat Amadi Adong Naknaba Tilhat Hidak Yonfam Singh
6: Manipur de Laiba Municipality Singh Namasigi Boundary Manung de Laiba Property Hybadi Land and Building Kudingmaki Property Profile Registration Toduna Property Kudingmaki Unique Property Identification Number Upin Pithok Chare Upin Asi Phangdriba Property Mapuna Atuba Matamda Isa Isagi Municipality the Property Profile Register Tobiduna Property Identification Number Sushoi Shoidena Lobiyu यूपिन नसिना अदोंगी प्रॉपर्टी एडुगी सक्ताची ओइन सीजन नरगनी अथुबा मतमदा यूपिन पाइबी नबा खंगन जरी म्युनिसिपालिटी खुदिंग मक्ता हौ किबा चेनबा चही लिसिंगनी कुनमंगा कुन तरुक तगी हौदुना म्युनिसिपालिटी खुदिंग मकी मनुंग द लैबा प्रॉपर्टी सिंगदगी लौफम तोपा प्रॉपर्टी टैक्स लौबगी थबक चथबा हौरे प्रॉपर्टी सिंगगी मपुना चही गी तिफम तोपा प्रॉपर्टी टैक्स मतम चान थिदोक पिदुना अदोंगी टाउन बु औवन ब पुरक पद सरुक याबियु चही यमगी प्रॉपर्टी टैक्स असी चही खुदिंगगी जुन था पाउबगी मनुंग द थिबिदुना मतम चान थीबगी रीबेट फंगबगी कुदोंग चाबा अदुसु लौबियु अदोंगी प्रॉपर्टी टैक्स सुशोई सोइदना नशिमक तिदोक पियु पाउजेन जरीबा सेक्रेटरी मणिपुर म्युनिसिपालिटी प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड
7: नहाक मेंटल हेल्थ इशू ग लोइनना वाखल नुवाई तनामदी लाइटादना लेरिबा मिसक अमरा करिगुंबा अदोम पुंगनिंग वाखल गयबा नुवाईतबा लेरबदि टेलीमानस मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर 14416 दा फोन दोबियो एकोगे काउंसलर सिंग वरी सानादुना अदोंगे अवाबा ngasi मको खलसे अदोमना 14416 दा कॉल तोबिरबा मतु ऑटोमेटिक रेस्पोंडर मना लैंग्वेज खनबगी दमक हायरकने मतमदुदा इंग्लिश की दमक 1 दा नंबीगने हिंदी की दमक 2 दा नंबीगने अमदि मणिपुरी की दमक 4 दा नंबीगने मखाताना रेस्पोंडर अदुना अदोंगे स्टेट खनना बहायरकने मतमदुदा मणिपुरी स्टेट की दमक अदोमना 2 दा नंबीगने मसेगी मतु एकोगे मणिपुरी लैंग्वेज की काउंसलर अमगा अदोंगे वरी सानबा यारगने अदोंगे दमक मणिपुर टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंस दा मतम मक्ता थोंगलाउ न हांगदुन थामजरी हेन अकुप मरोल खंपिनिंग बसिना मनांग नकपद लैबा आयुष्मान आरोग्य मंदिर अमदि डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वतानबियो पाउजेन जरीबा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम नेशनल हेल्थ मिशन अमदि डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर
0: Ado mathaurum tabiri bashia kasbani imphal ni aljing na midangge pung taret makhai tare manipuri ta pau tabirashi

का जादू फिल्म से महेंद्र कपूर और सुमन कल्याणपुर की मधुर आवाज में बी डी मिश्रा की कलम से निकले और एस एन त्रिपाठी के दिए संगीत से सजे इस गीत जैसा ही है ये साथ भी जो चला आ रहा है जन्म जन्म और युगों युगों से आपका और FM 100.1 MHz पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल का। और मैं अभिनीत शुक्ला आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ प्यार भरे गीतों का ये गुलदस्ता जिसे कहा जाता है हर सिंगार। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। अब आगे चलते हुए अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म मिलन से लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ, शब्द रचना आनंद बख्शी की और इससे सुरबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की सुपरहिट जोड़ी ने।

मुनीम जी फिल्म से गीता दत्त और हेमंत कुमार ने तो अपने जज्बात कुछ अलग ही सुरीले अंदाज में जाहिर कर दिए, लेकिन अगर आपके दिल की बातें अनकही रह जाएं, तो उन्हें गीतों के माध्यम से बयां करने हम यहाँ हर सिंगार में आपके लिए चुन चुन के गानों को पेश करते हैं ना। वैसे इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत था SD बर्मन का। साथियों, हम वापस लौटेंगे एक बेहद ही छोटे से अंतराल के बाद। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM 100.1 MHz पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

तो दोस्तों कार्यक्रम हर सिंगार में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अमतुल हई वफा की कलम से निकली गजल की इस छलक के साथ। मोहब्बत का उनसे ना इकरार करना कि मोहब्बत का उनसे ना इकरार करना, बस आंखों ही आंखों में इजहार करना। तो इसी बात पर आइए सुनते हैं सीआईडी फिल्म से ये गाना मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में। गीतकार जन निसार अख्तर और संगीत है ओपी नैयर का।

सीआईडी के जैसे ही फिल्म पेइंग गेस्ट में भी देवानंद ने ही मुख्य भूमिका अदा की। गीत को अपनी आवाज दी आशा भोसले और किशोर कुमार ने, बोल लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने और इसे संगीत से सजाया एसडी बर्मन ने। और साथियों, इस गीत के साथ ही हरसिंगार की यात्रा में रुकने का समय भी अब आने ही वाला है, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं फिल्म चोरी चोरी से लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया हुआ, शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन द्वारा संगीतबद्ध किया ये गीत।

और दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब समय हो रहा है समाचार सुनने का, तो कार्यक्रम हर सिंगार को आज के लिए यहीं पर देते हैं विराम। आप सुनते रहिए FM 100.1 MHz पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। जल्द वापस लौटेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेदा और तर्फ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइलों से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है, जो 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज 17वीं सदी के कवि संत मकुल दास महाराज की स्मृति में भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया। श्री सिंधिया ने संत मलुकदास को आध्यात्मिक शक्ति का वाहक बताया और देश में मुश्किल दौर में भी सनातन धर्म की मूल भावना को बनाए रखने में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि गहरा सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी है, जो दूसरे देशों से उसे अलग बनाता है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर 163 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
1: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
3: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments.

0: Mantra.
1: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor Prachi Priya.
2: नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है श्रोताओं स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ विराजमान हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य महोदय कार्यक्रम में आपका अभिनंदन
3: नमस्कार धन्यवाद
2: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां
1: Benchmark domestic stock market indices decline. Sensex falls nearly 800 points. Nifty settles at 23,119. Country's overall workforce participation rate WPR increases to 52.8% in August, highest level since March this year. And in the global crude oil market, Brent crude rises by 0.4%.
2: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट सेंसेक्स लगभग 800 अंक लुढ़का निफ्टी 23,119 पर बंद हुआ देश की कुल कार्यशक्ति भागीदारी दर अगस्त माह में बढ़कर 52.8% हो गई है इस वर्ष मार्च के बाद सबसे ऊंचा स्तर है और ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत लगभग आधा प्रतिशत बढ़ी

0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे समक्ष एके भट्टाचार्य जी विराजमान हैं. उनसे हम तमाम आर्थिक खबरों पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे. लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि दिन के अंतराल में दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कैसा व्यवहार किया. प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 778 अंक यानी 1% की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 280 अंक यानी 1.2% फिसल कर 23,119 पर स्थिर हुआ. बाजार के व्यापक स्तर पर भी भारी बिकवाली देखी गई. निफ्टी मिड कैप 100 सूचकांक 2% से अधिक और निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक लगभग 2.5% नीचे आया. शुरुआत में बाजार गैप अप के साथ खुले, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण जल्दी ही अपनी बढ़त गंवा दी. इसके बाद दोनों सूचकांक नीचे आ गए और पूरे ही सत्र के दौरान चौतरफा बिकवाली के कारण बाजार में गिरावट देखी गई.
0: Benchmark domestic equity indices ended sharply lower today. Sensex plunged 778 points, or 1%, to close at 74,004. Nifty shed 280 points, or 1.2%, to settle at 23,119. The broader market also witnessed a sharp decline, with the Nifty Mid-Cap 100 index falling 2.1%. and the Nifty Small Cap 100 index losing 2.4%. Earlier, the markets opened with a gap up, but soon erased their initial gains and amid rising global uncertainties. Both the stock market indices then turned lower and remained on a downward trajectory for the rest of the session as a broad-based sell-off swept across the board.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. सबसे अधिक नुकसान उठाने वाली कंपनियों के शेयरों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 6%, इंडिगो 4% और टाइटन तथा बजाज फिनसर्व 3% से अधिक नीचे आए. वहीं एचसीएल टेक 4%, इन्फोसिस 3.5% से अधिक और टेक महिंद्रा के शेयर 2.3% की बढ़त के साथ बंद हुए.
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 26 आउट ऑफ द 28 सेक्टर्स एज डाउनवर्ड. अमंग द Top underperformers, a capital goods shed 4.2%, realty lost 3.9%, and industrials dropped 3.6%. In contrast, information technology gained 1.9% and focused IT rose 1.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 3,381 companies declined, 1,109 companies advanced, and 194 companies remain unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में आज 41 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए पर बंद हुआ. भट्टाचार्य जी, जिस तरीके की हम वैश्विक अनिश्चितताएं देख पा रहे हैं, हमने देखा कि 10-year ट्रेजरी यील्ड वो लगभग 5% को छू करके लौटा और बंद हुआ लगभग 5% पर. ऐसे में जो उभरता बाजार है, यानी कि अगर मैं स्पेसिफिकली भारत के बाजार की बात करूं, उस पर क्या असर पड़ता आप देख पा रहे हैं?
2: देखिए, आपने ठीक ही कहा है कि जो वैश्विक स्थिति जो है
1: जी,
2: वो भारत के स्टॉक मार्केट को ऊपर काफी प्रभाव डाल रहा है इस वक्त. पर मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ वैश्विक स्थिति इसको ऊपर प्रभाव डाल रही है. हमारे देश में भी जो एक आर्थिक जो स्थिति है वो भी एक कारण है. पहली बात तो है कि जो हमारी जो कच्चे तेल की दाम जो है
1: जी,
2: वो करीबन $108 पर बैरल ब्रेंट क्रूड ऑयल

0: से जो सरकारों की फिस्कल एक्सेसेस जो हो रही थी उसी का कारण हम देख रहे हैं कि जो यील्ड मतलब जो बॉन्ड के जो दाम जो है वो गिर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। उससे क्या हो रहा है कि जो FII जो है उनको एक इजी एक ऑप्शन मिल रहा है, वो इजी ऑप्शन वो स्टॉक मार्केट से, हमारे स्टॉक मार्केट से बाहर जाकर अपने अमेरिकन स्टॉक मार्केट में या बॉन्ड पेपर्स में वो अपने आप को निवेश कर रहे हैं, क्योंकि दाम नीचे हो गए हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो उनकी जो रिटर्न्स जो है वो अचानक ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लग रही है। और तीसरा बात जो है मैं अभी कहता हूँ कि जो हमारी जो हमारे देश में जो इन्फ्लेशन का जो सिचुएशन जो है, मुद्रास्फीति जिसे हम कहेंगे, वो CPI का नंबर अभी कल परसों आया था, उसमें अगस्त का नंबर 4.8% में आया है। उसकी यही दर्शाता है कि हमारे देश में जो इन्फ्लेशनरी पोटेंशियल जो है और WPI थोक मूल्य जो है वो करीबन 9% के ऊपर है। तो 9% थोक मूल्य के ऊपर है और खुदरा मूल्य में 4.8% में है। तो इसको दिखाकर जो इन्फ्लेशन की जो ट्रेजेक्टरी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति के लिए अच्छी नहीं है। तो अगर अक्टूबर में जो जो एक डर कहिए या एक आशा थी या निराशा थी कि इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ जाएंगे, वो भी है। और कल फेड का भी निर्णय है कि वो किस तरह से वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए। बहुत लोगों का मानना है कि कल ही शायद फेड अपना इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ा दे, तो उससे क्या होगा कि जो सारी जो वैश्विक स्थिति और भारतीय आर्थिक स्थिति और मार्केट की जो आउटलुक जो है उसमें एक एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, उसी को दर्शा रहा है आज का स्टॉक मार्केट।
1: AKB, you mentioned about how important the interest rates are because of how the RBI will possibly react in its MPC meeting on October 7. And if the repo rate goes up, clearly that would also mean that lending rates would go up and the valuation of banking stocks is also affected. Today, the big hit in the domestic stock market, since we've already spoken about global uncertainty and how inflation is being linked to costs and business performance, Bank Nifty took a hit. It went down by 812 points. Is that likely to continue? Because banking performance has been very good as far as their corporates are concerned. Their net interest margins have improved. NPAs have come down. Why is it that banks took a hit today?
0: Well, let me first clarify a couple of points that you raised. The first point that you mentioned was about... what was your first point? The first point...
1: Sir, I asked you about Bank Nifty, which took a hit today, and RBI's monetary policy meeting will take place, where there is the Reserve assumption that it'll go up by 25 basis points.
0: No, the Reserve Bank of India's problem is that the liquidity in the economy is very, very high because of $100 billion of inflows coming in. So if the government and the RBI have to tame the inflation, it has to control the liquidity. Now, to control the liquidity, it must raise interest rates. So therefore, inflation is an outcome of that. So the RBI will probably be forced to review its interest rate stance also to manage the liquidity. As far as the Bank Nifty is concerned, Bank Nifty is today the there is a view that the bank's margins will come under pressure. Now they will come under pressure for the simple reason is the cost of raising money and the returns that you get by lending money, that margin is getting squeezed. So if you look at the short-term outlook, the banks are probably fearing that their income will come under attack. But if you look at some specific banks have done well even on a day when their Bank Nifty hasn't performed very well.
1: NBFCs fell today along with your commercial banking.

आशा भोसले की आवाज में अजीज कश्मीरी के शब्दों और ओपी नैयर के संगीत में पिरोया हुआ ये गीत था फिल्म ये रात फिर ना आएगी से। वैसे गीत मेरे मनमीत वाली रात तो फिर से आ चुकी है मेरे यानी कि अभिनीत के साथ। तो चलिए जल्दी से सुनते हैं अगला गीत फिल्म दिवाली की रात से तलत महमूद का गाया हुआ, जिसे लिखा नक्श लालपुरी ने और संगीतकार हैं स्नेहल भटकर।

1973 में आई फिल्म जोशीला से किशोर कुमार की आवाज में इस गीत के साथ ही हमारा भी अपने घर का रास्ता देखने का वक्त हो चुका है। तो आज के गीत मेरे मनमीत के साथ ही मुझे यानी कि अवनीत शुक्ला को दीजिए आज्ञा। आगे आप सुनेंगे समाचार और हमेशा की तरह सुनते रहिए एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। अपना रखिए अच्छे से ध्यान। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए पाकिस्तानी के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेदा और तौफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपए से अधिक के व्यक्तियों से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है। यह 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में कार्यक्रम में अ सेंचुरी ऑफ सर्विस द RSS इन 100 एक्ट्स ऑफ सेवा नाम की एक पुस्तक का विमोचन किया। ये किताब तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉक्टर तमिलीसाई सौंदर्यराजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये किताब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की 100 वर्ष की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दर्शाती है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट पर 163 रन बनाकर मैच में जीत हासिल कर ली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर निशिगंधा लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ. नमस्कार. और आज निशिगंधा के बहाने हम बात करेंगे सपनों की. सपने जो हम अक्सर देखते हैं, कभी खुली आंखों से, कभी बंद आंखों से. ख्वाब प्यारे लगते हैं, जब हकीकत से मिलते हैं तो थोड़े भारी लगते हैं. खैर, ख्वाबों के बारे में, सपनों के बारे में बहुत से शेर शायरी, बहुत सी बातें कही गई हैं. आज हम भी उन्हीं में से कुछ बातों को आपस में साझा करेंगे.

ये सपना वही है या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ सपने हम सब देखते हैं और भर भर के देखते हैं। खुली आंखों से तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सपने देखते हैं। वैसे भाई सपने अगर माना जाए तो दो तरह के होते हैं। वही जो मैं कह रही थी कि एक वो जो हम सोते समय आंखों से अचेतन मन में देखते हैं और दूसरे वो जिन्हें हम खुली आंखों से अपने भविष्य को संवारने के लिए देखते हैं। और दोनों ही तरह के सपने हम सबके जीवन

बात आज निशिगंधा में हम कर रहे हैं सपनों की. सपने कई बार बहुत अजीब सपने आते हैं. ऐसी ऐसी चीजें सपनों में आती हैं जिनके बारे में हम दिन में क्या कभी बात ही नहीं करते, कभी सोचते भी नहीं. ऐसी जगह हमें सपनों में दिख जाती है और कई बार हमें लगता है हम इसी घर में थे, यहीं थे, लेकिन सब कुछ बदला बदला सा लगता है. ये भी होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम किसी जानने वाले से बात कर रहे थे सपनों में, लेकिन वो जानने वाला उसकी शक्ल वैसी नहीं थी जैसी वो हकीकत में नज़र आता है. तो सपनों की दुनिया भी बहुत अजीब है. कई बार इन्हीं सपनों में हम उन बिछड़े हुए लोगों को भी देख लेते हैं जिनसे बिछड़े ज़माना हो गया है.

तो बहुत सारे चेहरे हमें सपनों में भी मिल जाते हैं जिन्हें हम हकीकत की जिंदगी में ढूंढते रह जाते हैं। मनुष्य का जीवन जो है ना वो आकांक्षाओं से भरा हुआ है और ये सपने ही हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जीवन को एक सही दिशा प्रदान करने के लिए सपनों का होना भी बेहद जरूरी है। सपनों के बिना हमारा जो जीवन है ना वो बिल्कुल नीरस हो जाता है, उसका उद्देश्य ही नहीं रहता। जब कोई सपना होता है तो हम उसे पूरा करने के लिए पूरा प्रयास भी करते हैं। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, खिलाड़ी बनना है, वैज्ञानिक बनना है या सिंगर बनना है, तो उसका भी तो वो सपना देखता है ना, और वही सपना उसे प्रेरित करता है जल्दी उठने के लिए, रियाज करने के लिए, कड़ी मेहनत करने के लिए। और जब वो ये सारी मेहनतों से गुजरता है तो वो निखर जाता है और वो बनता है जो वो बनना चाहता था। तो ऐसे ही खूबसूरत सपने सजाते रहिए और जीवन को आगे, निरंतर आगे बढ़ाते रहिए।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 12:37 और हो गए हैं पूरे 27 सेकेंड। आप हैं माधुरी के साथ निशी गंधा के इस सफर में, और आज हम बात कर रहे हैं ख्वाबों की। जी हाँ, ख्वाब तो हम सभी देखते हैं और तरह तरह के देखते हैं। कभी ऐसी ऐसी खूबसूरत जगहों पर जाने के भी ख्वाब देखते हैं कि उनके बारे में सुना है कि धरती पे ऐसी जगहें जन्नत हैं। जी हाँ, आप समझ गए ना, मैं कश्मीर की बात कर रही हूँ। मेरा भी यह ख्वाब है कि कभी मैं कश्मीर जाऊँ, हो सकता है आप

भाई कश्मीर का सपना तो है, चलिए कभी अगर यूं ना जा सके तो सपने में ही कश्मीर चले जाएंगे। चलिए कोई नहीं, और हम बात कर रहे हैं आज निशिकंधा में सपनों की, सपने उड़ान भरते हुए सपने, बहुत प्यारे खूबसूरत सपने, लेकिन कई बार जिंदगी की हकीकत हमें डराती भी है, हमारे सपने टूटते भी हैं। बहुत सारी चीज़ें करने के ख्वाब हम देखते हैं और कई बार अच्छे अच्छे ख्वाब भी टूट के चकनाचूर हो जाते हैं, और जब ख्वाब टूटते हैं ना तो सिर्फ ख्वाब ही नहीं टूटते, हम भी कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन जिंदगी है दोस्त, इस बिखराव को भी हमें समेटना होता है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, हम वो हैं जिनसे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। जी हाँ, इसी तरह के हौसले के साथ हमें जिंदगी को आगे बढ़ाना है, और हाँ ख्वाब देखना नहीं छोड़ना है, चाहे हमारे ख्वाब हमें रुला के ही क्यों ना जाएं।

सपने टूटते हैं हम ना उम्मीद होते हैं और सपने हमें इसी तरह रुलाते हैं लेकिन सपने हमें जीवन की राह भी दिखाते हैं सपने हमें रोमांटिक भी बनाते हैं और अगला गीत जो मैं आपको सुनवाने वाली हूं ना उसके बिना सपनों की ये महफिल कैसे कंप्लीट हो सकती है जी हां ड्रीम गर्ल की बात कर रहे हैं वो गाना तो मैं आपको सुनाऊंगी ही उससे पहले

ले कुछ और भी कहूंगी। और ये देखिए चंद लाइनें हैं, बड़ी प्यारी हैं, आप तक पहुंचा रही हूं कि काश कोई हम पर भी इतना प्यार जताती, पीछे से आकर वो हमारी आंखों को छुपाती, सीने से लगाती मुंह बनाती, पर बेगानी राहों पर इस तरह छोड़ कर न जाती। काश कोई हम पर भी, कोई हमारी भी नींदों में आती, ख्वाबों में आती, मुझे चिढ़ाती और लड़के मनाती, दर्द को वो मेरे कम कर जाती। काश कोई हमारे भी ख्वाबों में आती। तो चलिए इन सब पंक्तियों के बाद अब वो प्यारा गीत, जो ड्रीम्स की बातें हो रही हैं तो ड्रीम गर्ल को तो आना ही पड़ेगा।

रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

कोई सपने तो ऐसे ही होते हैं, आंखों में आते हैं, समाते हैं, चले जाते हैं. कई लोग अपने ख्वाब पूरे करने के लिए बस अपनी रात भी गवा बैठते हैं. और बहुत सारे हमारे अभी भी साथी जो हमें सुन रहे होंगे, हो सकता है वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाग रहे हों. तो चलिए, रात भी बाकी है, बात भी बाकी है, लेकिन निशे गंधा का ये सफ़र यहीं हम समाप्त करेंगे इस गीत के साथ.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्य जहाज MTEL गैला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हुती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हुती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क होगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2,000 रुपये से अधिक के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपये प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है। ये 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। औषधि विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के आह्वान के अनुरूप 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि सभी 7 राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान NIPR, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU और विभागों के सक्रिय भागीदारी के साथ संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने यह स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान कई परिसरों में वृक्षारोपण भी किया गया। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र, केरल और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बिहार में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट पर 163 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Navneet Singh. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi last evening, External Affairs Ministry spokesperson Sandhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
1: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
3: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthis was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region. On the attack on commercial vessel MT El Gaya off the coast of Oman, Mr. Jaiswal said, targeting commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in the region is unacceptable to India. Finance Ministry has clarified that there will be no charges at all for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. The Ministry yesterday said that the payments to the merchants P2M up to 2,000 rupees along with transactions covered under the zero MDR framework for small merchants will also remain free. The ministry said consequently about 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It added that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. NPCI has said that a revised UPI merchant discount rate framework has been introduced on select merchant transactions effective from 15th of next month while keeping UPI free for consumers. Indian parliamentary delegation is participating in the 69th Commonwealth Parliamentary Conference, CPC, being held in Cape Town, South Africa, till the 19th of this month. The delegation is being led by Deputy Chairman of Rajya Sabha, Harivansh. The conference is also being attended by 32 presiding officers and 18 secretaries from state and union territories legislatures of India who are members of the Commonwealth Parliamentary Association. Rajya Sabha Secretariat informed that Mr. Harivansh arrived in Cape Town yesterday and held bilateral meetings with Speaker of the National Assembly Angela Thotuzile Didiza, Deputy Chairperson of the National Council of Provinces of South Africa Pobulan Govinder and Deputy Speaker of National Assembly Anhele Lotriet. Union Health Secretary Punya Salila Srivastav has participated in a stakeholder workshop on strengthening health professional education for cardiometabolic diseases, CMD. The workshop was organized by All India Institute of Medical Sciences, Delhi, under the Partnership for Education of Health Professionals program. In a social media post, the Ministry of Health said, such collaborative platforms are important to align education and training with emerging health needs and strengthen the preparedness of health professionals to address India's growing burden of NCDs. Ministry of Statistics and Program Implementation has said that the overall labor force participation rate, LFPR, for persons aged 15 years and above has increased to 55.6% in August this year, which was 55.4% in July this year. According to the monthly bulletin for August this year of the Periodic Labor Force Survey of the Ministry, a similar trend has also been observed in rural areas where the LFPR for persons aged 15 years and above increased to 58.2% in August 2026. It was 58% in July this year. Vice President C.P. Radhakrishnan today released a book titled A Century of Service, the RSS in 100 Acts of Seva at a function in New Delhi. And with that, we end this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. गीत सुहाने लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ. नमस्कार. और गीत सुहाने में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्यारे प्यारे पुराने गाने, ओल्ड क्लासिक्स. तो जुड़ जाइए हमारे साथ, एकदम चिपक के बैठ जाइए और इन प्यारे प्यारे गीतों को हम पहुंचाएंगे आप तक. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ. और ये जो गीत है ये हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए फिल्म सूरज से.

ये प्यारा सा गीत हम आपके लिए लेकर आए थे फिल्म सूरत से मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा।

जी हाँ, ये हवा ये नदी का किनारा, इतना प्यारा सा गीत हम लेकर आए थे आपके लिए फिल्म घर संसार से, आशा जी और मन्ना डे के आवाज में, संगीत रवि साहब का।

ये दर्द भरा गीत आप सुन रहे थे फिल्म मेरे महबूब से लता जी और मोहम्मद रफी की आवाजों में और संगीत दिया नौशाद साहब ने अगला गीत आप सभी के लिए फिल्म पालकी से

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 1:33 और हो गए हैं पूरे 26 सेकंड। ये सफर है गीत सुहाने का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। और अभी आपने जो प्यारा सा गीत सुना था वो था फिल्म पालकी से मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। और अब हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए ये गीत फिल्म गहरा दाग से।

ये बहुत ही प्यारा सा गीत है, जब भी सुनते हैं एकदम वैसे ही दिल को छूता है जैसे लगता है आज ही पहली बार सुना है। फिल्म गहरा दाग से ये गीत सुन रहे थे आप मोहम्मद रफ़ी और आशा जी की आवाज़ में, संगीत रवि साहब का और बोल लिखे शकील बदायूनी ने।

फिल्म जिंदगी से ये गीत सुना आपने मोहम्मद रफी साहब की आवाज में शंकर जय किशन के संगीत से सजा था ये गीत और बोल लिखे हजरत जयपुरी और शैलेंद्र साहब ने अब अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए फिल्म जिंदगी और ख्वाब से

तो ये प्यारा सा गीत आपने सुना मुबारक बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, शंकर जयकिशन का संगीत और फिल्म थी हमराही। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और ये सफ़र है गीत सुहाने का। अगला सुहाना सा गीत है फिल्म संगम से आप सभी के लिए।

कर तुम नाराज ना होना। खूबसूरत गीत फिल्म संगम से सुना आपने मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। शंकर जय किशन के संगीत से सजा था ये गीत, बोल लिखे शैलेंद्र ने। और अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए फिल्म तलाश से। गीत सुहाने का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे गीत। जी हाँ, ओल्ड मेलोडीज। तो गीत सुहाने से ये आखिरी

नगमा है आज की रात का आप तक पहुंच रहा है फिल्म तलाश से लता जी मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में संगीत दिया है एसडी बर्मन साहब ने

और इसी के साथ गीत सुहाने की ये महफिल यहीं समाप्त करते हैं। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्य जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल सदस्यों और लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हुती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेदा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत में हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क होगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2,000 रुपये से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपये प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और ये वक्त है रात सुरमई का जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ नमस्कार तो रात सुरमई को आगे बढ़ाने के लिए हम शुरू करते हैं ये गीत और ये गीत हम लेकर आ रहे हैं फिल्म कर्ज से

दूसरे की उम्रें हम पूछा करते थे और वक्त गुजर जाता है लेकिन वो जो पल है ना कहीं वक्त की शाख पर ही अटके रह जाते हैं। सच में ये जो उम्र होती है ना जवानी की 16 17 18 साल, वाह क्या बात होती है, बेफिक्री की उम्र होती है और हर उम्र में ख्याल आता है इस उम्र का। तिनका उड़ान पर है हवाओं के साथ साथ, मैं चल रहा हूँ सबकी दुआओं के साथ साथ। वक्त सबका आता है, मन छोटा नहीं करना चाहिए। हाँ ये ज़रूर है कि देर सवेर हो जाती है और बातों ही बातों में ये बात भी कि तिनका तिनका कांटे तोड़े सारी रात कटाई की, क्यों इतनी लंबी होती है चांदनी रात जुदाई की।

में अक्सर दिल बड़ा मचलता है, बहुत कुछ कहना होता है पर कहने से डरता है, धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, मेरे जिंदगी का पहला प्यार हो तुम। जी हाँ, पहले प्यार की बात ही अलग होती है और बातों में भी क्या क्या अलग होता है ये बताने वाला है हमारा अगला गीत।

पहले पहले प्यार की बहुत सारी बातें हैं जो गाहे बगाहे याद आ जाती हैं। और सच तो ये भी है कि सबके नसीब में ये पहला प्यार थोड़े ही होता है। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं दिल की चोरी तक। जी हाँ, चोरी में दिल की वो हुनर कर गया, चोरी में दिल की वो हुनर कर गया, देखते ही आंखों में घर कर गया। दहर में मैं खाक बसर ही रहा, उम्र को इस तौर बसर कर गया। और दिल ही नहीं है मंजिले सीना में अब, या से वो बेचारा सफर कर गया। चोरी में दिल की वो हुनर कर गया, देखते ही आंखों में घर कर गया। और ये पंक्तियां लिखी मीर तकी मीर साहब ने, और आप तक पहुंचाई है इस नाचीज ने, और अगला गीत भी आप तक पहुंचा रही हूं।

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और ये सफर है रात सुरमई का और रात्रि के 2:32 और हो चुके हैं पूरे 48 सेकंड।

रात सुरमई के इस सफर में आप सुन रहे हैं बहुत ही खूबसूरत गीत और उम्मीद करती हूँ कि रात के इस सफर में आपके अच्छे हम सफर साबित होंगे ये गीत। वफा तुझसे ऐ बेवफा चाहता हूँ, वफा तुझसे ऐ बेवफा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ।

आगे चलें या पीछे चलें और चलते रहें, लेकिन रात सुरमई का ये सफ़र अब कह रहा है कि यहीं इसको विराम दिया जाए। तो आखिरी गीत आपकी नज़र करते हुए, गुरेज पा है नया रास्ता किधर जाएं, चलो कि लौट के हम अपने अपने घर जाएं। इसी के साथ दीजिए विदा माधुरी को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित होगा। 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेदा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैस प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: औषध विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के आह्वान के अनुरूप 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि सभी 7 राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU और विभागों की सक्रिय भागीदारी के साथ संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने यह स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान कई परिसरों में वृक्षारोपण भी किया गया। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल शुरू हुआ। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच तालमेल को बेहतर बनाना, नई चुनौतियों का सामना करना और दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करना है। सैन्य अभ्यास का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 160 रन बनाए। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में यह लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Navneet Singh. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi last evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
1: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
3: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthi was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said, New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region. On the attack on commercial vessel MT El Gaya off the coast of Oman, Mr. Jaiswal said, targeting commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in the region is unacceptable to India. The Finance Ministry has clarified that there will be no charges at all for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. The Ministry yesterday said that payments to merchants P2M up to 2,000 rupees, along with transactions covered under the zero MDR framework for small merchants, will also remain free. The Ministry said, consequently, about 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It added that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. NPCI has said that a revised UPI merchant discount rate framework has been introduced on select merchant transactions effective from 15th of next month while keeping UPI free for consumers. In Saudi Arabia, civil defense activated emergency alerts in Mecca, Jeddah and Taif yesterday. Alerts have also been issued and lifted in six cities, including Yanbu, Saudi Arabia's main Red Sea oil port. Saudi Arabia yesterday issued fresh but very brief emergency alerts in Mecca, Jeddah and Taif in the context of potential Houthi attacks. The alerts were lifted in just a few minutes, with authorities saying the danger had passed. The Department of Pharmaceuticals organized Swachhta Pakhwada from 1st to 15th of this month, realizing Prime Minister Narendra Modi's call for Swachh Bharat, Swasth Bharat of maintaining cleanliness around. Ministry of Chemicals and Fertilizers said, with active participation of all seven National Institutes of Pharmaceutical Education and Research, NIPERS, public sector units and departments, the cleanliness drive was undertaken by faculty members, officers and employees. A joint military exercise, Yudh Abhyas, involving the troops of Indian and US armies, which seeks to bolster interoperability among the two forces and address emerging challenges while further strengthening the bilateral defense partnership, kicked off yesterday. The opening ceremony of the 22nd edition of the exercise was held at Auli Foreign Training Node in Uttarakhand. The exercise is simultaneously being conducted at Auli and Mahajan Field Firing Range in Rajasthan, the Defense Ministry said. Meghalaya Cabinet has approved amendments to the Meghalaya Film Tourism Policy 2025. The aim was to bring greater clarity and strengthen the policy's effectiveness in promoting Meghalaya as a destination for film production. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the second T20 International at the Arun Jaitley Stadium in Delhi to take a 2-0 lead in the 3-match series. Put into bat first, Afghanistan scored 159 runs, losing 8 wickets in stipulated 20 overs. In reply, India easily overhauled the target in 14.5 overs. Nitish Kumar Reddy was declared player of the match. The third match of the series will be played at the same venue tomorrow. And with that, we end this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समय हो चुका है 3:11 और 6 सेकंड हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस गीत के साथ

जानते हैं दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि अगर कोई दूर है तो उससे हम प्यार नहीं करते। कई बार इंसान बहुत दूर होता है लेकिन उसकी याद हर पल हमारे साथ रहती है। फासले सिर्फ कदमों के होते हैं, दिल के नहीं। सच्चा प्यार तो वो है जिसमें सामने न होकर भी कोई दिल के बहुत करीब महसूस हो, उसकी एक आवाज चेहरे पर मुस्कान ले आए और उसकी याद अकेलेपन को भी खूबसूरत बना दे। तो चलिए सुनते हैं इसी एहसास को इस गीत में।

प्यार में सबसे खूबसूरत एहसास होता है किसी की आवाज का इंतजार दूर बैठे इंसान को बस इतना भरोसा है कि वो मुझे याद कर रहा होगा मुझे पुकार रहा होगा मोहब्बत में इंतजार अच्छा लगता है लेकिन जब इंतजार बहुत लंबा हो जाए ना तो दिल की बेचैनी भी बढ़ने लगती है फिर मन करता है कि बस एक आवाज आए और कोई हमें पुकार ले

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर समय हो चुका है 3:28 और 54 सेकंड कार्यक्रम चल रहा है हमराही और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान

दोस्तों, मोहब्बत में इंतजार शायद सबसे खूबसूरत एहसासों में एक है। जब किसी खास इंसान के लौटने की उम्मीद दिल में होती है ना, तो वक्त चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, दिल उसका इंतजार करना नहीं छोड़ता। कभी-कभी सामने वाला पास नहीं होता, उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, मुलाकात भी नहीं होती, लेकिन फिर भी दिल कहता है कि वो आएगा जरूर, क्योंकि सच्चे प्यार में दूरी हो सकती है, लेकिन उम्मीद कभी खत्म नहीं होती।

0: दोस्तों कभी-कभी प्यार में सबसे प्यारी शिकायत यही होती है कि सामने वाला हमसे बातें तो करता है लेकिन दिल की बात नहीं कहता। उसके बातों में अपनापन भी महसूस होता है और कभी-कभी लगता है कि शायद ये सिर्फ हमारी उम्मीद है। मोहब्बत में यही तो उलझन है। कभी उसकी एक छोटी सी बात दिल को यकीन दिला देती है कि प्यार सच्चा है और यही खामोशी मन में सवाल खड़े कर देती है कि क्या वो मुझसे सच में प्यार करता है या यूं ही बातें करता रहता है। तो चलिए सुनते हैं ऐसा ही एक नगमा।
1: यूं ही तुम मुझसे

कभी कभी मौसम भी दिल की बात कहने लगता है बादलों का यूं घिरना हवा का कुछ गुनगुनाना और किसी की याद का अचानक दिल में उतर आना शायद मोहब्बत का असर कुछ ऐसा ही होता है जब दिल किसी के ख्यालों में खो जाए तो बादल भी दीवाने लगते हैं और हवाएं भी कोई प्रेम संदेश लेकर आती हुई महसूस होती है यही तो पुराने गीतों की खूबसूरती है साधारण से मौसम को भी एक खूबसूरत एहसास में बदल देना तो चलिए सुनते हैं ये गीत

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही मीना चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार, 4:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम अरुणिमा में। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए ₹2,000 तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि ₹75,000 और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा ₹300 प्रति लेन देन होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेदा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों की तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान में खतरा है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटी साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है। ये 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। मेघालय कैबिनेट ने कल मेघालय फिल्म टूरिज्म पॉलिसी 2025 में बदलावों को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य मेघालय को फिल्म निर्माण केंद्र के तौर पर बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री कॉनराड के सगमा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हमने प्रोत्साहन को अधिक लक्षित बनाने के लिए कुछ योग्यता शर्तों में सुधार किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक के साथ तेज हवा और मूसलाधार बारिश की संभावना है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Navneet Singh.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर समय हो चुका है 4:10 और 15 सेकंड अरुणिमा कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार

अरुणिमा कार्यक्रम में शुरुआत हो चुकी है भक्ति में प्रस्तुति की और आज मैं हूं इस कार्यक्रम में आपके साथ मीना चौहान। दोस्तों जब मन बहुत थक जाता है ना तब दुनिया की भागदौड़ के बीच कहीं सुकून नहीं मिलता, तब इंसान अपने आराध्य की शरण में चला जाता है। वहां ना कोई शिकायत रह जाती है ना कोई सवाल, बस मन में एक विश्वास होता है कि मेरे कान्हा सब देख रहे हैं और सब समझ रहे हैं।

दोस्तों, जब जिंदगी में सुख के पल आते हैं ना, तो हमारे आसपास लोगों की कमी नहीं रहती। खुशियां बांटने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर समय हो चुका है 4:27 और 25 सेकंड अरुणिमा कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मीना चौहान दोस्तों राधा और मीरा दो नाम लेकिन प्रेम की दो अलग-अलग तस्वीरें राधा का प्रेम कृष्ण में अपना संसार देखता है तो मीरा का प्रेम कृष्ण को ही अपना संसार मान लेता है एक प्रेम एक ने प्रेम को जिया और दूसरी ने प्रेम को अपनी भक्ति बना लिया कभी-कभी जिंदगी में भी कोई रिश्ता ऐसा होता है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और भावनाएं ही सब कुछ कह देती हैं सच्चा प्रेम शायद वही है जिसमें पाने से ज्यादा समर्पण होता है और साथ होने से ज्यादा दिल में बस जाने की चाह होती है इन्हीं भावनाओं को खूबसूरती से पिरोता फिल्म राम तेरी गंगा मैली का यह गीत सुनते हैं

दोस्तों, जिंदगी की राह में हर मोड़ पर कोई हमारे साथ चले ये जरूरी तो नहीं। कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंसान को अकेले ही तय करना पड़ता है। भीड़ साथ हो तो सफर आसान लगता है, लेकिन अकेले चलना ही हमें अपने भीतर की ताकत से मिलवाता है। कभी पीछे मुड़कर देखिए ना, जो लोग रास्ते में मिले कुछ पल साथ चले और फिर अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। शायद यही जिंदगी है, मिलना, बिछड़ना और फिर अकेले चलते रहना।

कहते हैं कि प्रेम जब सच्चा हो ना तो उसे किसी परिचय की जरूरत नहीं होती, बस एक एहसास ही काफी होता है। और कृष्ण की बंसी की धुन में तो जैसे सदियों से उसी प्रेम की पुकार बसी है। बंसी बजती है तो राधा का नाम याद आता है और राधा का नाम आते ही मन में एक ऐसी शांति उतरती है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें यही तो सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने का नाम नहीं बल्कि समर्पण का नाम है, जहां दूरी भी रिश्ते को कम नहीं करती बल्कि प्रेम को और गहरा कर देती है।

सच यानी सत्यम, कल्याण यानी शिवम और सुंदरता यानी सुंदरम। इन तीन शब्दों में जैसे जीवन का पूरा दर्शन समाया हुआ है। खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं होती, खूबसूरती तो उस सोच में होती है जो किसी के जीवन में प्रेम, विश्वास और अपनापन भर दे। कभी कभी हम बाहरी सुंदरता को देखकर ठहर जाते हैं, लेकिन समय हमें सिखाता है कि असली सुंदरता मन की होती है, भावनाओं की होती है और उस सच्चाई की होती है जो किसी रिश्ते को उम्र भर खूबसूरत बनाए रखती है।

धन दौलत और सुख सुविधाएं इंसान को कुछ समय के लिए खुशियां दे सकती हैं, लेकिन मन का सुकून तो तभी मिलता है जब दिल में प्रभु का नाम बस जाए। मीरा ने भी तो यही कहा था कि उन्हें संसार की दौलत नहीं चाहिए, उन्हें तो अपने श्याम का प्रेम ही सबसे बड़ा धन लगता है। कि कितनी खूबसूरत बात है ना, जब मन में भक्ति का दीप जलता है तो छोटी छोटी खुशियां भी अनमोल लगने लगती है। प्रभु का नाम ऐसा धन है जिसे ना कोई चुरा सकता है और ना समय इसे कम कर सकता है।

श्रोताओं, इस भक्ति रचना के साथ ही मीना चौहान को अरुणिमा कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार। 5:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम भोर सुहानी में। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि लोगों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए ₹2000 तक का लेनदेन निशुल्क रहेगा। इस तरह लोगों से व्यापारियों को लगभग 96% लेनदेन प्रभावित नहीं होगा। ₹2000 से ज्यादा के लेनदेन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि ₹75,000 और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा ₹300 प्रति लेनदेन होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली की में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है। ये सम्मेलन 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में RSS नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉक्टर तमिल सिलाई सौंदर राजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि ये पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह औली विदेशी परीक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। मेघालय कैबिनेट ने कल मेघालय फिल्म टूरिज्म पॉलिसी 2025 में संशोधन को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य मेघालय को फिल्म निर्माण केंद्र के तौर पर बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने सोशल मीडिया पर कहा कि हमने प्रोत्साहन को ज्यादा लक्षित बनाने के लिए कुछ योग्यता शर्तों में सुधार किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचयन जनभागीदारी अभियान का गीत जारी किया है। इस गीत को प्रसिद्ध गायक संगीतकार शंकर महादेवन ने गाया है। ये गीत जनभागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को संगीत में आवाज देता है। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को ₹3000 से बढ़ाकर ₹6000 करने की घोषणा की है। यह निर्णय कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Navneet Singh. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi last evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns. The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said the issue of the Houthis were also discussed. There was recently an attack on

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है 5:11 और 7 सेकंड भोर सुहानी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हरियाली हो, खुला आसमान हो और सामने से जाता हुआ कोई रास्ता, बस मन करता है चलते ही जाए। जिंदगी भी तो कुछ ऐसी ही है ना, रास्ते पहले से तय नहीं होते, लेकिन चलते रहने से मंजिल जरूर मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की।

फूल का काम है खिलना और इंसान का काम है मुस्कुराना हालात जैसे भी हो अपने अंदर की खुशी को मुरझाने मत दीजिए क्योंकि एक मुस्कान कभी-कभी पूरे दिन का रंग बदल देती है तो चलिए सुनते हैं ये मुस्कुराता हुआ गीत

दोस्तों, पहाड़ों की अपनी ही एक भाषा होती है। खामोश रहते हैं लेकिन बहुत कुछ कह जाते हैं। और पहाड़ हमें एक और बात सिखाते हैं, ऊंचाई चाहिए।